0: मैं किस टाइप की पी अक्कड़ हूँ बता सकते हो?
1: मैं समझा नहीं।
0: जैसे पी के लोग सब कुछ ओवर ओवर करते हैं, ओवर हंसते हैं, ओवर होते हैं, तो मैंने क्या किया? मैं किस टाइप की पी अक्कड़ हूँ?

0: Qu'est-ce que c'est, toi?
1: Vous êtes à l'ouvrir?
2: Mom, quand?
0: Comme, qu'est-ce que c'est, toi?
2: Mom, t'es qu'il y a quoi, tu vois?
0: Mom, t'es qu'il y a, t'es-tu?
1: Car, bé.
2: Tu phone, qu'il y a?
0: Phone, qu'il y a, m'a-t-il? Je peux te dire, qu'il y a, t'es-tu?
2: नहीं भी होता तो क्या कर लेते आप?
3: बड़ा बदतमीज है तू। तेरा हाल पूछने के लिए फोन कर रहा हूँ
4: और तो अपने बाप से टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं।
3: ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? कृष्ण
4: कृष्ण

0: तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
1: Elambu FM 89.6 MHz.
2: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो
3: तिनीगा रंगदा बेनन्द माईवरी प्रोत्साहित लाबरी सेमुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी समक बसुगो अंक 41 दी रंगिदा स्वागत मुला नियोग तामाङ हिरा सर डिप्रेसनला अनुभव लजिबा गदे द माई सुगो न्यानो शब्द गदे थेनी गदेला विश्वास द पुनर्जीवित लसुगो थे शब्द गदे प्रेम देन आशा से प्लिङमा तादोला स्यान्दो द प्रोत्साहन पिन्से थेनी गदेला लुइरी गेन प्रभाव तला हिब्रू 10:24 यङसे गिक्सेन गिक द माया लवदेन जबगे लवला लागिरी आड खबर खाला ताम जे लाई जब यङ स्यान्दोदा थेनी कदे कदे अद्भुत देन विशेष मुला बिसी पाङमुला जब यङ थेनी गदे विवा गे देन वा थेनी गदेला उपस्थित र लागिरी विशिष्ट देन इमानदार प्रशंसा लवन थे शब्द गदे से थेनी गदेदा उत्थान लवरी देन प्रेम देन जेबा गे गदे सिप्लिङबा लुइग्यार प्रिबरी रु लमु ला एबिसी 4:29 एनी गदे रंग रंग नङरी आजब ताम थलाउ बरु जब ताम देन सन्दो द मिला विश्वास बडक तबन निब खाल्ला ताम जे लाउ तिक द विषम एनी गदे से लब ताम ग्याम मि गदे द जब तगै सु रुइरी यङ निरन्तर आलोचनाला शिकार ताला मि गदे से यङ से लब हजिबै नोन गल्ती द पुई बरी हतार लमोला थेनी गदे से यङ द अयोग्य वा असफल बिवारी हमला जब दोना यंग थे मी गदे द फिल्टर लवरी अहम थेन दे थेनी गदे द परमेश्वर वचन से अजेबा लवरी अहम थेनी गदे से यंग द दुख देन पराजयला खड़ल री लसेला मुला बरु जब यंग संदो द सुधार लवा ताम गदे से पांगला चुदा थे गदे द अनुग्रह पिनमुला रोमी 15:5 दुख नखम्बा शक्ति देन आठ पिनबा परमेश्वर सेन एनी गदे द ख्रिस येसु रङमन दोषी ब्रबोदिन रङ रङ नोङरी दिक्सी चिखम्बा सेम पिनगै यङ देन हाई मदमन धैर्यवान मुसुला रोसे यङला कमजोरी गदे द क्षमा लसुमुला रोसे यङला गल्ती गदे ग्याम बचाव लसेला प्रतिज्ञा लसुमुला रोसे यङ द हाई मदमन प्रोत्साहिन पिनमा मुसुला यङसे एन सन्दो द थेरङमन व्यवहार लब प्रयास लदोला एक थेस्लोनो कि 5:14 जो जो आले नानाङा बेगदे द अर्ति पिनबेन हरेस चब गदे द आठ पिङ्गो ओछे अखम्ब गदे द रो लवदेन जम्मलन ओन्सरी जबा गे लसी उनगो विवा नन्न बिन्ती मुला चु लुइरी लानन ताम गदी मुला जोसे यङ द लोङबरी हम्ला जब यङला प्रियजन कादे कठिन दुई ग्याम गुजबला जीवा मुल्ता मुला यंगसे थेनी गदेदा रु थेनी गदेला आबा मुसुला थेन दे रोसे थेनी गदेदा हानी ग्याम जोग लसु मुला बिसी गोल्छे डनबरी आवश्यक मुला यंगसे कमजोरी गदेदा प्रोत्साहन पिनमा प्रयास एन लदोला थेनी गदेदा न्यन्सुगो कि परमेश्वर रु थेनी गदेला परमेश्वर मुसुला थेन दे थेनी गदेसे सामना लजीबा समस्या कदे पार लवरी परमेश्वर लसुगो परमेश्वरला हाई मदमन थेरी मुसुला हितोपदेश 12:25 चिन्तित तिङसे मिरा कमजोर सुमुला तसै दयालु वचनसे थेदा हर्षित सुमुला तिनी हलाइसे मैसुगो जो उदासी निराशा वा डिप्रेसन संघर्ष लजीबा मुला थेनी गदेला दयालु शब्द सोसी थेनी गदेला लुइला छोप लसुगो थेनी गदेला निराशा द दोषी आनन्दरी परिवर्तन लसुगो रोसे लसुगो धन्यवाद रङ्गिदा परमेश्वरजी प्रशस्त आशिष पिनगई जयमसी आमेन।

0: डमरेलले डिट्टु दिल्ली प्राइमरी जति दखल दियो त.
1: एलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज.

हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर वीडियो में बार बार भूल जाता हूँ कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कुछ कुछ बोल रहा हूँ, बस यही मैं दिल से उतर देता हूँ, तो कर